0: ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के एक मिशन का कहना है कि ये यकीन करने की माकूल वजूहात मौजूद हैं कि अमरीका ने कबल अज़ीं रवां साल जनूबी ईरान के एक स्कूल पर मोहलिक मिज़ाइल हमला करके जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया। ईरान से मुतालिक इंसानी हकूक़ कौंसिल के हकायक तलाश करने वाले एक मिशन ने जुमेरात के रोज़ एक रिपोर्ट जारी की। मिशन ने फरवरी में सूबा हरमुजगान के शहर मीनाप में एक प्राइमरी स्कूल पर हुए हमले की तहकीकात की, जिसमें बच्चों समेत कम से कम 160 अफराद हलाक हो गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि अमरीकी फौज ने गलती से पुराने डेटा की बुनियाद पर अपना हदफ तय किया था। अक्वामे मुत्तहिदा की तहकीकती टीम ने वाजह किया कि यह प्राइमरी स्कूल ईरान के इलीट फौज यूनिट सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी की तब्दील शुदा इमारत में काम कर रहा था। उसने कहा कि अमरीका ये तस्दीक करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करने की अपनी जिम्मेदारी में नाकाम रहा कि यह एक फौजी हदफ था और उसने फजाई हमला एक सिविलियन मकाम को निशाना बनाने के काफी खतरे से आगाह होने के बावजूद किया। मिशन ने कहा कि उसे ये यकीन करने की माकूल वजूहात मिली हैं कि अमरीका ने बिला इम्तियाज हमले करने के जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया, जिसके नतीजे में आम शहरी हलाक जख्मी हुए या शहरी मकामात को नुकसान पहुंचा। हफ्ते को नागोया शहर में एशियन गेम्स के आगाज से कबल शुमाली कोरिया के वजीर खेल जापान पहुंच गए हैं। ख्याल किया जा रहा है कि ये तकरीबन 8 सालों में शुमाली कोरिया के किसी वजीर का पहला दौरा जापान है। किम इलगुक को लेकर आने वाला तैयारा जुमेरात को आची प्रीफेक्चर के चुबू सेंटोरिया बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे पर उतरा। जापान पहुंचने पर किम ने जापान में मुकीम कोरियाई बाशिंदों की जनरल एसोसिएशन के अहदेदारों के साथ मुसाफा किया। हवाई अड्डे से बाहर निकलने पर कोरिया यूनिवर्सिटी के तलबा समेत तकरीबन 80 अफराद ने उनका इस्तकबाल किया। इससे कबल उन्होंने नवंबर 2018 में शुमाली कोरिया की कौमी ओलंपिक कमेटी के सदर की हैसियत से दूसरे ममालिक की ओलंपिक कमेटी के अराकीन के साथ इजलास में शिरकत के लिए जापान का दौरा किया था। प्यांगयांग के जोहरी और मिसाइल प्रोग्रामों के खिलाफ पाबंदियों के तहत जापान ने उसूली तौर पर शुमाली कोरियाई बाशिंदों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है। ताहम बैन अलाक्वामी मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ी और दीगर अफराद को इस पाबंदी से इस्तिस्ना दिया जाता है। NHK को मालूम हुआ है कि अमरीका ने एक बार फिर जापान पर जोर दिया है कि वो अमरीकी आलुओं के लिए मुल्की मंडी को मुकम्मल तौर पर खोलने के तरीक़ेकार को तेज़ करे। ज़राए का कहना है कि ये बातचीत उस वक्त हुई जब आला जापानी हुक्काम ने कबल अज़ीं रवां माह अमरीका का दौरा किया था। टोक्यो ने बीमारियों और कीड़ों के खदशात की वजह से ज़्यादातर कच्चे आलुओं की दरामद पर पाबंदी आयद की है। ताहम जापानी वजारत ज़राअत अब अमरीकी दरख्वास्त के बाद पाबंदी हटाने के इस अमल को आगे बढ़ा रही है। तवक्को है कि वजारत जुमे को होने वाली मीटिंग में मुतल्लिका बीमारियों और कीड़ों की निशानदेही करेगी। इसके बाद ये खतरे में कमी के मखसूस इकदामात पर बातचीत की जानिब पेशरफ्त करेगी। अमरीकी आलू की सनत से वाबस्ता कुछ लोगों का कहना है कि जापान को अमरीकी दरख्वास्त का जवाब देने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा है। आलू के जापानी काश्तकार और दीगर ये पाबंदी उठाने की सख्त मुखालफत करते हैं। उनका कहना है कि इससे मुल्क के ज़रई शोबे को शदीद धचका लग सकता है। ताहम वजारत का कहना है कि वो साइंसी शवाहिद की बुनियाद पर आगे बढ़ रही है।
1: और सामिन, आखिर में आज की अहम खबरों का खुलासा पेश है। बैंक ऑफ जापान BOJ ने अपनी कलीदी शराय सूद को 1/4% बढ़ाकर तकरीबन 1.25% करने का फैसला किया है। ये तकरीबन 31 सालों में बुलंद तरीन सतह है। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस यानी SDF ने फजाई तौर पर आग बुझाने की कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला कवानों का कोन्निचिवा नमस्कार।
1: सभी साथियों को रोहिणी रमन का भी प्यार भरा नमस्कार और कोन्निचिवा। लेकर हाजिर हैं आपके पत्रों के जवाब।

0: दोस्तों, आज का कार्यक्रम कुछ खास है, लेकिन खासियत कार्यक्रम में नहीं बल्कि इसे किए जाने वाली जगह में है।
1: जी हाँ, आज हम बिल्कुल नए नवेले स्टूडियो से आप तक ला रहे हैं यह कार्यक्रम।
0: जी हाँ, हमारा कार्यालय दरअसल अब एक नई इमारत में शिफ्ट हो चुका है, इसलिए स्टूडियो भी बिल्कुल नया नया है।
1: तो वायला जी, कैसा लग रहा है आपको इस नए स्टूडियो में?
0: अरे बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए, बिल्कुल बड़ा सा हो गया है और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें इतनी बड़ी खिड़की है और बाहर का नज़ारा तो भाई क्या कहने।
1: बिल्कुल वायला जी, ये जो स्टेडियम है ना, वो जापान का 1964 के समय ओलंपिक खेलों के समय बनाया गया स्टेडियम ही है ना?
0: हाँ, जो दिख रहा है ना आपको।
1: जी
0: हाँ, ये वही स्टेडियम है।
1: अरे वाह,
0: तो देखिए नज़ारा तो अच्छा है ना?
1: हाँ बिल्कुल। तो अब हम नई ऊर्जा और उमंग के साथ आपकी सेवा में हाजिर होंगे।
0: जी हाँ, और नई जगह के आदि होने में समय तो लगेगा, लेकिन आपको हम कतई निराश नहीं होने देंगे।
1: बिल्कुल। वैसे वायला जी, इस समय जापान में उमंग, जोश और ऊर्जा का एक और स्थान है ना, वो है नागोया शहर।
0: बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि इस सप्ताह 19 तारीख से नागोया में एशियाई खेलों का शुभारंभ होगा। तैयारियां जोरों पर है और भारत से भी दर्शक आने लग गए हैं।
1: लेकिन मैं देख रही हूँ कि जापान में इसको लेकर कुछ खास उत्साह नहीं है। कई लोगों को पता भी नहीं है कि एशियन गेम्स होते क्या हैं और उनका आयोजन नागोया में हो रहा है।
0: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा रोहिणी जी। देखिए, जापान में ओलंपिक का खुमार तो देखने को मिलता है, लेकिन एशियाई खेलों को लेकर उतना भी नहीं है
1: जी।
0: और मैंने तो ये भी सुना है कि भारत की जो क्रिकेट टीम है वो भी राष्ट्रीय टीम नहीं बल्कि कोई और टीम आ रही
1: अच्छा?
0: है।
1: अच्छा, ऐसा है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन नजदीक आने लगेंगे उत्साह बढ़ना शुरू होगा। वैसे अभी कुछ दिन पहले नागोया में भीषण बारिश हुई थी और बाढ़ की स्थिति जैसी बन गई थी। नदियां उफन रही थी, सड़कें जलमग्न थी, आपदा जैसी स्थिति थी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, और उस समय मैं तो सोच रही थी कि अगर ऐसा खेलों के दौरान हुआ तो क्या होगा।
0: हाँ, लेकिन देखिए अगले दिन हालात बेहतर हो तो गए थे।
1: हाँ।
0: तो थोड़ी राहत की सांस भी ली और उम्मीद है कि लगातार बारिश का ये जो सिलसिला जो चल रहा है ना, अब थम जाएगा और ये खेल जो है शानदार तरीके से आयोजित हो सकेंगे।
1: जी हाँ, बस बारिश न हो और समुद्री तूफान भी न आए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल भारत में लोगों को अभी भी इसको लेकर जोश दिख रहा है और हमारे श्रोता भी तो पीछे नहीं है ना। और इसी सिलसिले में सुरेश जी ने भी हमें लिखा था ना।
1: जी हाँ, श्रोताओं में भी जोश दिख रहा है, सभी को बेसब्री से इंतजार है इस आयोजन का। देखते हैं कि भारत का क्या प्रदर्शन रहता है।
0: जी, और भारत में इसका प्रसारण तो देखिए बढ़ चढ़ कर होगा, तो श्रोताओं को पल पल की जानकारी शायद हमसे ज्यादा मिल जाएगी।
1: जी,
0: लेकिन भाई हमारी भी नजरें टिकी होंगी इस पर। और अब रोहिणी जी देखिए, विराम देते हैं अपनी बातचीत पर।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और अब बढ़ते हैं पत्रों की ओर।
1: हाँ हाँ, चलिए पत्रों की ओर बढ़ते हैं। अच्छा वायला जी, यह देखिए, यह डाक से आया एक पत्र है।
0: अरे वाह, डाक से, दिखाइए जरा, बड़े दिनों बाद कोई पत्र पहुंचा है ना। दिखाइए दिखाइए,
1: यह लीजिए।
0: अरे वाह,
1: भेजा है पी हनुमंता राव जी ने हैदराबाद से।
0: अच्छा, अरे देखिए कितनी सुंदर डाक टिकटें लगाकर भेजी है ना।
1: बिल्कुल।
0: और ये ऐसे देखने में लग रहा है ना कि भारत की कठपुतलियों के थीम पर कुछ आधारित ये डाक टिकटें हैं।
1: हाँ,
0: कितनी रंग बिरंगी हैं, कितनी अच्छी है ना।
1: बहुत ही सुंदर है। राव जी ने हमें आशीर्वाद दिया है।
0: अच्छा।
1: और कह रहे हैं कि हमारा रेडियो और टीवी प्रसारण दोनों ही देखते हैं।
0: भाई ये तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि दोनों पर एक से एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम होते हैं। राव जी आगे भी देखें और हमें फिर लिखें। वैसे आप वेबसाइट के माध्यम से भी लिख सकते हैं या फिर फेसबुक पर, इससे आप नियमित रूप से अपनी टिप्पणी हमें भेज पाएंगे।
1: वायला जी, पिछले दो अंकों में हमने पाक कला विशेषज्ञ और कंटेंट क्रिएटर नेहा शाह से बातचीत प्रसारित की थी ना।
0: हाँ नेहा जी, आपको पता है कि जापान में शाकाहारी वीगन भोजन पर उन्होंने जो जानकारी दी थी वो वाकई दिलचस्प रही, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं मालूम था उन चीजों के बारे में।
1: उनकी बातें आपको ही नहीं श्रोताओं को भी बहुत भाई।
0: अच्छा
1: जी, जमशेदपुर झारखंड से SB शर्मा जी ने लिखा है कि नेहा शाह से की गई वार्ता काफी रोचक और जानकारी से भरपूर लगी। जापान के अनेक शहरों की यात्रा और शाकाहारी भोजन पर चर्चा अच्छी लगी। एक महिला द्वारा चलाए जाने वाले रेस्तरां और उसके कायदे कानून की जानकारी भी खास थी। रेस्तरों की मालकिन द्वारा समय की पाबंदी और सेवा की कटिबद्धता जापान देश के अनुशासन को दर्शाती है। रोचक और सुंदर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद
0: शर्मा जी, इस बेहतरीन टिप्पणी के लिए धन्यवाद। सही में उसूलों पर कायम रहना और समय की पाबंदी पूरे जीवन में ऐसा अनुशासन ले आती है कि उससे कई चीजें आसान हो जाती हैं। हमें खुशी है कि आपको ये प्रस्तुति पसंद आई। और रोहिणी जी, देखिए नेहा जी के साथ बातचीत पर केसिंगा ओडिशा से सुरेश अग्रवाल जी ने भी लिखा है, और इन्होंने लिखा है कि नेहा दीपक शाह द्वारा प्रस्तुत जापानी व्यंजनों का परिचय और रसा स्वादन बेहद रुचिकर लगा। लजीज व्यंजनों के साथ हिंदी में उनका अंग्रेजी का तड़का भी काबिले तारीफ रहा।
1: बिल्कुल।
0: हालांकि उन्हें सुनकर लगा कि वे चाहती तो सहज और अच्छी हिंदी में भी अपनी बात उतनी ही प्रभावशाली ढंग से रख सकती थी। ये जानना भी सुखद लगा कि वीगन फूड के रूप में जापान में अब शाकाहारी व्यंजनों के विकल्प काफी बढ़ गए हैं। इसमें दो राय नहीं कि वीगन फूड का बढ़ता चलन शाकाहारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नेहा जी से रूबरू कराने के लिए हार्दिक धन्यवाद।
1: वायला जी, दूसरी कड़ी पर भी अलग से टिप्पणी आई है सुरेश जी की।
0: अच्छा
1: जी, लिखते हैं 6 सितंबर का चेरी के देश से अंक बेहद खास और ज्ञानवर्धक लगा। यद्यपि इस अंक में पत्रों को समाहित नहीं किया जा सका, लेकिन पाक कला विशेषज्ञ नेहा दीपक शाह से हुई बातचीत की दूसरी कड़ी में जापानी व्यंजनों के संबंध में दी गई जानकारी अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण लगी।
0: अच्छा
1: जी, वो आगे लिखते हैं, नेहा जी से हुई बातचीत सुनते हुए यह अनुभव हुआ कि भारत और जापान के बीच सदियों पुरानी मैत्री अब केवल सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्वाद और पाक कला के आपसी आदान प्रदान के रूप में भी अपनी नई पहचान बनाएगी। विशेष रूप से सोया मिल्क को फाड़कर बनाए जाने वाले तोफू की रेसिपी मुझे बहुत पसंद आई।
0: हाँ हाँ, वैसे उनका तरीका अच्छा था, तो मैं भी इसे घर पर ट्राई करना चाहूंगी।
1: बिल्कुल। सुरेश जी देखिए आगे लिखते हैं, जापानी खानपान की यह सरलता और विशिष्टता सचमुच आकर्षित करती है। नेहा जी ने जापानी भोजन की विशेषताओं के साथ साथ जापानी जीवन शैली में अनुशासन, स्वच्छता, शुचिता और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में जिस सहज और रोचक ढंग से बताया, उससे जापान के प्रति हमारा आकर्षण और भी बढ़ गया है। बातचीत के माध्यम से जापान को केवल एक देश के रूप में नहीं, बल्कि एक विशिष्ट जीवन दृष्टि और संस्कृति के रूप में जानने का अवसर मिला। नेहा जी से यह सार्थक और ज्ञानवर्धक बातचीत सुनवाने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।
0: सुरेश जी, आपकी प्रतिक्रिया बेहद लाजवाब है। आपने सही कहा कि कोई भी देश केवल कोई भूखंड नहीं, बल्कि एक संस्कृति है जिसके कई पहलू हैं, और उनमें से भोजन संस्कृति वहाँ की जीवन शैली को भी दर्शाती है, एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। वैसे आज तक मैंने ज्यादा वीगन ट्राई नहीं किया।
1: मैंने
0: है,
1: भी नहीं,
0: और एक दो बार ही खाया है, लेकिन मुझे इतना मजा सच कहूँ तो इतना मजा नहीं आया। लेकिन नेहा जी की बातें सुनकर मैं एक बार फिर सोचती हूँ कि आजमा कर देखना चाहिए।
1: चलिए आजमाएंगे जल्दी।
0: जी
1: हाँ, और वैसे जापान में वीगन या शाकाहारी भोजन तलाशना एक चुनौती हो सकती है। आए दिन आपको भारतीयों के ग्रुप्स में इस प्रकार के भोजन के बारे में जानकारी तो साझा करने के अनुरोध मिलते ही रहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और मेरे कई शाकाहारी मित्रों के साथ अब मैं ये जानकारी जल्दी से जल्द साझा कर लूंगी।
0: हाँ, वैसे भारतीय रेस्तरां तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन अगर जापानी भोजन खाना हो तब तो आती है मुश्किल।
1: जी,
0: लेकिन जापानी भोजन में भी शाकाहारी विकल्पों के बारे में जानकारी काफी अनूठी थी मुझे लगता है।
1: हाँ अच्छा, आइए अब देखते हैं, फेसबुक पर भी इस कार्यक्रम से जुड़ी कई टिप्पणियां हैं।
0: अच्छा,
1: परालिया जीवराज लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया पाक रेसिपी, अतुल्य कार्यक्रम चेरी के देश से।
0: और देखिए मोनिता मिधा जी लिखती हैं, नेहा जी के साथ बातचीत बेहतरीन थी, हमें अपने भोजन में सोयाबीन को जरूर शामिल करना चाहिए, जैसे तोफू, मिसो पेस्ट और सोयाबीन की फलियां एदामामे। ये प्रोटीन का बहुत ही बढ़िया स्रोत होता है। हम कुछ साल पहले तक अपने खेतों में सोयाबीन उगाया करते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण अच्छा अब नहीं उगाते। वैसे मैंने सोया दूध और टोफू बनाने का एक बार प्रयास किया था।
1: मुनीता जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। सोयाबीन प्रोटीन का बहुत ही आसानी से उपलब्ध स्रोत है। इसे आसानी से भोजन में शामिल भी किया जा सकता है, बस थोड़ा सा रचनात्मक होने की जरूरत है।
0: जी हाँ, और देखिए, ये है रूपोश्री बोर ठाकुर जी, ये लिखती हैं, वार्ता पसंद आई, बहुत रोचक लगी। और संसार सिंह लिखते हैं कि मैं इस बार कार्यक्रम पुराने ट्रांजिस्टर पर सुन रहा
1: हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूब कहा आपने। और भी श्रोता हैं जिन्होंने इमोजी के कमेंट किए हैं। इनके नाम हैं नवीन शर्मा, सुनीता जैन, कैलाश शमा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो कृपया नोट कर लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
0: स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में। रोहिणी जी, आइए अब क्यों ना श्रोताओं को हमारी वेबसाइट पर जारी नई नई सामग्री की जानकारी दे देते हैं।
1: जी हाँ, आजकल काफी कुछ डाला जा रहा है और तकरीबन हर रोज ही।
0: जी हाँ, और देखिए, आपको याद है कुछ समय पहले हमने जापान में ऑटो रिक्शा के बढ़ते प्रचलन पर एक रिपोर्ट पेश की थी?
1: हाँ हाँ, मुझे याद है, हमारी NHK की प्रोड्यूसर होरिकोशी जी के ऑटो रिक्शे पर सवारी की थी ना आपने।
0: हाँ, आपको बिल्कुल याद है, सही पहचाना आपने। तो आप देखिए, उस रिपोर्ट का एक वीडियो अब हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसका शीर्षक है हाईटेक जापान में देसी ऑटो रिक्शा की सवारी।
1: दोस्तों, आप इस वीडियो में जापान के नजारों का आनंद भी ले सकते हैं और ऑटो रिक्शा को करीब से देख सकते हैं। वैसे वायला जी, आपको बैठकर कैसा लगा था?
0: अरे रोहिणी जी, क्या बताऊं, देखिए, जब मैं दिल्ली में थी ना, तो आमतौर पर ऑटो लेकर ही इधर उधर आया जाया करती थी, और तब तो मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं फिर से कॉलेज के जमाने में उस समय पहुंच गई हूँ और मैं छात्रा बन गई और दिल्ली की सड़कों पर घूम रही हूँ। और बिल्कुल जैसे एक टाइम कैप्सूल होता है ना, पीछे चले जाते हैं, पीछे चली गई जापान। और जिस दिन हमने उस दिन रिकॉर्डिंग की थी, तो उस दिन गर्मी भी बहुत थी, तो पूरा भारत जैसा माहौल था।
1: ओ, तो गर्मी ने सोने पे सुहागा कर दिया। एक ऑटो कितनी सारी यादें जगा देता है ना। तो दोस्तों, आप भी यह वीडियो जरूर देखें और हमें अपनी प्रतिक्रिया भेजें।
0: जी हाँ, और इसके अलावा देखिए, हमारी एक नई सेवा है मौसम संबंधी जानकारी को लेकर। आजकल ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपात चेतावनी के समय।
1: जैसा कि कार्यक्रम के शुरू में हमने बात की कि नागोया में भारी वर्षा के कारण बाढ़ आ गई। 2-3 हफ्तों से जापान के कई इलाकों में भारी वर्षा हुई है। जापान में आपदाओं से जुड़ी आपात स्थिति का सर्वोच्च स्तर है 5। हाल में कई बार स्तर 5 की चेतावनी जारी हुई, तो हमने भी अपनी वेबसाइट और फेसबुक पर तुरंत इसके बारे में जानकारी दी।
0: जी हाँ, वेबसाइट या फेसबुक पर इस चेतावनी के साथ एक लिंक दिया होता है, जिस पर क्लिक करने से मौसम विज्ञान एजेंसी की वेबसाइट खुल जाती है और वहां पर रंगों से दर्शाया जाता है कि कहां पर कितने स्तर की आपदा का खतरा है। दोस्तों, गर्म होती जलवायु के कारण आपदाओं का पैमाना और आवृत्ति बढ़ती जा रही है, और ऐसे में आपात चेतावनी की जानकारी का इस्तेमाल करके आप अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं।
1: जापान में जल निकासी प्रबंधन बहुत अच्छा है, फिर भी कभी कभी इतनी बारिश होती है कि जलभराव हो जाता है। ऐसे में जान माल के नुकसान से बचने के लिए जापान में आपात चेतावनी जरूर काम आ सकती है।
0: जी हाँ, तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप एक बार जरूर हमारी वेबसाइट या फेसबुक का रुख करेंगे और नवीनतम सामग्री पर एक नजर डालेंगे। और दोस्तों, आजकल पत्र कम आने लगे हैं, तो आप जरूर जरूर हमारी वेबसाइट या फेसबुक पर जाएं और अपनी टिप्पणियों से हमें अवगत कराते रहें।
1: बिल्कुल बाइला जी, अब हम पहुंच गए हैं कार्यक्रम के अंत में, तो आज क्यों ना कोई गीत सुन लिया जाए।
0: हाँ हाँ, जरूर, इतनी बातें हो गई हैं, तो कुछ गीत संगीत मनोरंजन भी जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: तो आज हम लेकर आए हैं एक गीत, भुताई नी तात्ते, यानी मंच पर तैयार, और इसे गाया है युगल जोड़ी यो आसोबी ने। और ये देखिए, ये जो गीत है ये एनएचके का 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए थीम सॉन्ग था, जिसमें खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया जा रहा है।
1: अरे वाह।
3: ここが私の未来だ。

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गीत बुताईनी ताते और इसे गाया था युगल जोड़ी यो आसोबी ने। ये गीत आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। और दोस्तों अब समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमें पत्र लिखते रहें। अगर पत्र लिखना झंझट है तो फेसबुक पर अपनी टिप्पणी से हमें अवगत करा सकते हैं अपने विचार। आपके पत्रों की प्रतीक्षा में फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दें वायला कवानू को
1: और रोहिणी रमन को
0: सायोनारा, नमस्कार।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला कवानों का कोनिचिवा नमस्कार।
1: सभी साथियों को रोहिणी रमन का भी प्यार भरा नमस्कार और कोनिचिवा। लेकर हाजिर हैं आपके पत्रों के जवाब।

0: दोस्तों आज का कार्यक्रम कुछ खास है, लेकिन खासियत कार्यक्रम में नहीं बल्कि इसे किए जाने वाली जगह में है।
1: जी हाँ, आज हम बिल्कुल नए नवेले स्टूडियो से आप तक ला रहे हैं यह कार्यक्रम।
0: जी हाँ, हमारा कार्यालय दरअसल अब एक नई इमारत में शिफ्ट हो चुका है, इसलिए स्टूडियो भी बिल्कुल नया नया है।
1: तो वायला जी, कैसा लग रहा है आपको इस नए स्टूडियो में?
0: अरे बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखिए बिल्कुल बड़ा सा हो गया है और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें इतनी बड़ी खिड़की है और बाहर का नजारा तो भाई क्या कहने।
1: बिल्कुल वायला जी, ये जो स्टेडियम है ना, वो जापान का 1964 के समय ओलंपिक खेलों के समय बनाया गया स्टेडियम ही है ना?
0: हाँ, जो दिख रहा है ना आपको।
1: जी
0: जी हाँ, ये वही स्टेडियम है।
1: अरे वाह,
0: तो देखिए नजारा तो अच्छा है ना?
1: हाँ बिल्कुल। तो अब हम नई ऊर्जा और उमंग के साथ आपकी सेवा में हाजिर होंगे।
0: जी हाँ, और नई जगह के आदि होने में समय तो लगेगा, लेकिन आपको हम कतई निराश नहीं होने देंगे।
1: बिल्कुल। वैसे वायला जी, इस समय जापान में उमंग, जोश और ऊर्जा का एक और स्थान है ना, वो है नागोया शहर।
0: बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि इस सप्ताह 19 तारीख से नागोया में एशियाई खेलों का शुभारंभ होगा। तैयारियां जोरों पर है और भारत से भी दर्शक आने लग गए हैं।
1: लेकिन मैं देख रही हूँ कि जापान में इसको लेकर कुछ खास उत्साह नहीं है। कई लोगों को पता भी नहीं है कि एशियन गेम्स होते क्या हैं और उनका आयोजन नागोया में हो रहा है।
0: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा रोहिणी जी। देखिए, जापान में ओलंपिक का खुमार तो देखने को मिलता है, लेकिन एशियाई खेलों को लेकर उतना भी नहीं है
1: जी।
0: और मैंने तो ये भी सुना है कि भारत की जो क्रिकेट टीम है वो भी राष्ट्रीय टीम नहीं बल्कि कोई और टीम आ
1: अच्छा?
0: रही है।
1: अच्छा, ऐसा है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन नजदीक आने लगेंगे उत्साह बढ़ना शुरू होगा। वैसे अभी कुछ दिन पहले नागोया में भीषण बारिश हुई थी और बाढ़ की स्थिति जैसी बन गई थी। नदियां उफन रही थी, सड़कें जलमग्न थी, आपदा जैसी स्थिति थी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, और उस समय मैं तो सोच रही थी कि अगर ऐसा खेलों के दौरान हुआ तो क्या होगा।
0: हाँ, लेकिन देखिए अगले दिन हालात बेहतर हो तो गए थे।
1: हाँ।
0: तो थोड़ी राहत की सांस भी ली और उम्मीद है कि लगातार बारिश का ये जो सिलसिला जो चल रहा है ना, अब थम जाएगा और ये खेल जो है शानदार तरीके से आयोजित हो सकेंगे।
1: जी हाँ, बस बारिश न हो और समुद्री तूफान भी ना आए।
0: बिल्कुल बहरहाल भारत में लोगों को अभी भी इसको लेकर जोश दिख रहा है और हमारे श्रोता भी तो पीछे नहीं है ना। और इसी सिलसिले में सुरेश जी ने भी हमें लिखा था ना।
1: जी हाँ, श्रोताओं में भी जोश दिख रहा है, सभी को बेसब्री से इंतजार है इस आयोजन का। देखते हैं कि भारत का क्या प्रदर्शन रहता है।
0: जी, और भारत में इसका प्रसारण तो देखिए बढ़ चढ़ कर होगा, तो श्रोताओं को पल पल की जानकारी शायद हमसे ज्यादा मिल जाएगी।
1: जी
0: लेकिन भाई हमारी भी नजरें टिकी होंगी इस पर। और अब रोहिणी जी देखिए, विराम देते हैं अपनी बातचीत
1: बिल्कुल,
0: पर
1: बिल्कुल।
0: और अब बढ़ते हैं पत्रों की ओर।
1: हाँ हाँ, चलिए पत्रों की ओर बढ़ते हैं। अच्छा वायला जी, यह देखिए, यह डाक से आया एक पत्र है।
0: अरे वाह, डाक से, दिखाइए जरा, बड़े दिनों बाद कोई पत्र पहुंचा है ना। दिखाइए दिखाइए,
1: ये लीजिए।
0: अरे वाह,
1: भेजा है पी हनुमंता राव जी ने हैदराबाद से।
0: अच्छा, अरे देखिए कितनी सुंदर डाक टिकटें लगाकर भेजी है ना।
1: बिल्कुल।
0: और ये ऐसे देखने में लग रहा है ना कि भारत की कठपुतलियों के थीम पर कुछ आधारित ये डाक टिकटें हैं।
1: हाँ,
0: कितनी रंग बिरंगी हैं, कितनी अच्छी है ना।
1: बहुत ही सुंदर है। राव जी ने हमें आशीर्वाद दिया है।
0: अच्छा।
1: और कह रहे हैं कि हमारा रेडियो और टीवी प्रसारण दोनों ही देखते हैं।
0: भाई ये तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि दोनों पर एक से एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम होते हैं। राव जी आगे भी देखें और हमें फिर लिखें। वैसे आप वेबसाइट के माध्यम से भी लिख सकते हैं या फिर फेसबुक पर, इससे आप नियमित रूप से अपनी टिप्पणी हमें भेज पाएंगे।
1: वायला जी, पिछले दो अंकों में हमने पाक कला विशेषज्ञ और कंटेंट क्रिएटर नेहा शाह से बातचीत प्रसारित की थी ना।
0: हाँ नेहा जी, आपको पता है कि जापान में शाकाहारी वीगन भोजन पर उन्होंने जो जानकारी दी थी वो वाकई दिलचस्प रही, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं मालूम था उन चीजों के बारे में।
1: उनकी बातें आपको ही नहीं श्रोताओं को भी बहुत भाई।
0: अच्छा
1: जी, जमशेदपुर झारखंड से SB शर्मा जी ने लिखा है कि नेहा शाह से की गई वार्ता काफी रोचक और जानकारी से भरपूर लगी। जापान के अनेक शहरों की यात्रा और शाकाहारी भोजन पर चर्चा अच्छी लगी। एक महिला द्वारा चलाए जाने वाले रेस्तरां और उसके कायदे कानून की जानकारी भी खास थी। रेस्तरों की मालकिन द्वारा समय की पाबंदी और सेवा की कटिबद्धता जापान देश के अनुशासन को दर्शाती है। रोचक और सुंदर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद।
0: शर्मा जी, इस बेहतरीन टिप्पणी के लिए धन्यवाद। सही में उसूलों पर कायम रहना और समय की पाबंदी पूरे जीवन में ऐसा अनुशासन ले आती है कि उससे कई चीजें आसान हो जाती हैं। हमें खुशी है कि आपको ये प्रस्तुति पसंद आई। और रोहिणी जी, देखिए नेहा जी के साथ बातचीत पर केसिंगा ओडिशा से सुरेश अग्रवाल जी ने भी लिखा है, और इन्होंने लिखा है कि नेहा दीपक शाह द्वारा प्रस्तुत जापानी व्यंजनों का परिचय और रसा स्वादन बेहद रुचिकर लगा। लजीज व्यंजनों के साथ हिंदी में उनका अंग्रेजी का तड़का भी काबिले तारीफ रहा।
1: बिल्कुल।
0: हालांकि उन्हें सुनकर लगा कि वे चाहती तो सहज और अच्छी हिंदी में भी अपनी बात उतनी ही प्रभावशाली ढंग से रख सकती थी। ये जाना भी सुखद लगा कि वीगन फूड के रूप में जापान में अब शाकाहारी व्यंजनों के विकल्प काफी बढ़ गए हैं। इसमें दो राय नहीं कि वीगन फूड का बढ़ता चलन शाकाहारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नेहा जी से रूबरू कराने के लिए हार्दिक धन्यवाद।
1: वैला जी, दूसरी कड़ी पर भी अलग से टिप्पणी आई है सुरेश जी की।
0: अच्छा
1: जी, लिखते हैं, 6 सितंबर का चेरी के देश से अंक बेहद खास और ज्ञानवर्धक लगा। यद्यपि इस अंक में पत्रों को समाहित नहीं किया जा सका, लेकिन पाककला विशेषज्ञ नेहा दीपक शाह से हुई बातचीत की दूसरी कड़ी में जापानी व्यंजनों के संबंध में दी गई जानकारी अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण लगी।
0: अच्छा
1: जी, वो आगे लिखते हैं, नेहा जी से हुई बातचीत सुनते हुए यह अनुभव हुआ कि भारत और जापान के बीच सदियों पुरानी मैत्री अब केवल सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्वाद और पाक कला के आपसी आदान प्रदान के रूप में भी अपनी नई पहचान बनाएगी। विशेष रूप से सोया मिल्क को फाड़कर बनाए जाने वाले तोफू की रेसिपी मुझे बहुत पसंद आई।
0: हाँ हाँ, वैसे उनका तरीका अच्छा था, तो मैं भी इसे घर पर ट्राई करना चाहूंगी।
1: बिल्कुल। सुरेश जी, देखिए आगे लिखते हैं, जापानी खानपान की यह सरलता और विशिष्टता सचमुच आकर्षित करती है। नेहा जी ने जापानी भोजन की विशेषताओं के साथ साथ जापानी जीवन शैली में अनुशासन, स्वच्छता, शुचिता और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में जिस सहज और रोचक ढंग से बताया, उससे जापान के प्रति हमारा आकर्षण और भी बढ़ गया है। बातचीत के माध्यम से जापान को केवल एक देश के रूप में नहीं, बल्कि एक विशिष्ट जीवन दृष्टि और संस्कृति के रूप में जानने का अवसर मिला। नेहा जी से यह सार्थक और ज्ञानवर्धक बातचीत सुनवाने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।
0: सुरेश जी, आपकी प्रतिक्रिया बेहद लाजवाब है। आपने सही कहा कि कोई भी देश केवल कोई भूखंड नहीं, बल्कि एक संस्कृति है जिसके कई पहलू हैं, और उनमें से भोजन संस्कृति वहाँ की जीवन शैली को भी दर्शाती है, एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। वैसे आज तक मैंने ज्यादा वीगन ट्राई नहीं किया
1: मैंने
0: है।
1: मैंने भी नहीं,
0: और एक दो बार ही खाया है, लेकिन मुझे इतना मजा सच कहूँ तो इतना मजा नहीं आया। लेकिन नेहा जी की बातें सुनकर मैं एक बार फिर सोचती हूँ कि आजमा कर देखना चाहिए।
1: चलिए आजमाएंगे जल्दी
0: जी।
1: और वैसे जापान में वीगन या शाकाहारी भोजन तलाशना एक चुनौती हो सकती है। आए दिन आपको भारतीयों के ग्रुप्स में इस प्रकार के भोजन के बारे में जानकारी तो साझा करने के अनुरोध मिलते ही रहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और मेरे कई शाकाहारी मित्रों के साथ अब मैं ये जानकारी जल्दी से जल्द साझा कर लूंगी।
0: हाँ, वैसे भारतीय रेस्तरां तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन अगर जापानी भोजन खाना हो तब तो आती है मुश्किल
1: जी।
0: लेकिन जापानी भोजन में भी शाकाहारी विकल्पों के बारे में जानकारी काफी अनूठी थी मुझे लगता है।
1: हाँ अच्छा, आइए अब देखते हैं, फेसबुक पर भी इस कार्यक्रम से जुड़ी कई टिप्पणियां हैं।
0: अच्छा,
1: परालिया जीवराज लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया पाक रेसिपी, अतुल्य कार्यक्रम चेरी के देश से।
0: और देखिए मोनिता मिधा जी लिखती हैं, नेहा जी के साथ बातचीत बेहतरीन थी, हमें अपने भोजन में सोयाबीन को जरूर शामिल करना चाहिए, जैसे तोफू, मिसो पेस्ट और सोयाबीन की फलियां एदामामे। ये प्रोटीन का बहुत ही बढ़िया स्रोत होता है। हम कुछ साल पहले तक अपने खेतों में सोयाबीन उगाया करते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण अच्छा अब नहीं उगाते। वैसे मैंने सोया दूध और तोफू बनाने का एक बार प्रयास किया था।
1: मोनिता जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। सोयाबीन प्रोटीन का बहुत ही आसानी से उपलब्ध स्रोत है। इसे आसानी से भोजन में शामिल भी किया जा सकता है, बस थोड़ा सा रचनात्मक होने की जरूरत है।
0: जी हाँ, और देखिए, ये है रूपोश्री बोर ठाकुर जी, ये लिखती हैं, वार्ता पसंद आई, बहुत रोचक लगी। और संसार सिंह लिखते हैं कि मैं इस बार कार्यक्रम पुराने ट्रांजिस्टर पर सुन रहा हूँ।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही खूब कहा आपने। और भी श्रोता हैं जिन्होंने इमोजी के कमेंट किए हैं। इनके नाम है नवीन शर्मा, सुनीता जैन, कैलाश शमा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो कृपया नोट कर लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
0: स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में। रोहिणी जी, आइए अब क्यों ना श्रोताओं को हमारी वेबसाइट पर जारी नई नई सामग्री की जानकारी दे देते हैं।
1: जी हाँ, आजकल काफी कुछ डाला जा रहा है और तकरीबन हर रोज ही।
0: जी हाँ, और देखिए, आपको याद है कुछ समय पहले हमने जापान में ऑटो रिक्शा के बढ़ते प्रचलन पर एक रिपोर्ट पेश की थी।
1: हाँ हाँ, मुझे याद है, हमारी NHK की प्रोड्यूसर होरिकोशी जी के ऑटो रिक्शे पर सवारी की थी ना आपने।
0: हाँ, आपको बिल्कुल याद है, सही पहचाना आपने। तो आप देखिए, उस रिपोर्ट का एक वीडियो अब हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसका शीर्षक है हाईटेक जापान में देसी ऑटो रिक्शा की सवारी।
1: दोस्तों, आप इस वीडियो में जापान के नजारों का आनंद भी ले सकते हैं और ऑटो रिक्शा को करीब से देख सकते हैं। वैसे वायला जी, आपको बैठकर कैसा लगा था?
0: अरे रोहिणी जी, क्या बताऊं, देखिए, जब मैं दिल्ली में थी ना, तो आमतौर पर ऑटो लेकर ही इधर उधर आया जाया करती थी, और तब तो मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं फिर से कॉलेज के जमाने में उस समय पहुंच गई हूँ और मैं एक छात्रा बन गई हूँ और दिल्ली की सड़कों पर घूम रही हूँ। और बिल्कुल जैसे एक टाइम कैप्सूल होता है ना, पीछे जी चले जाते हैं। बिल्कुल पीछे चली गई जमाने। और जिस दिन हमने उस दिन रिकॉर्डिंग की थी, तो उस दिन गर्मी भी बहुत थी, तो पूरा भारत जैसा माहौल था।
1: ओ, तो गर्मी ने सोने पे सुहागा कर दिया। एक ऑटो कितनी सारी यादें जगा देता है ना। तो दोस्तों, आप भी यह वीडियो जरूर देखें और हमें अपनी प्रतिक्रिया भेजें।
0: जी हाँ, और इसके अलावा देखिए, हमारी एक नई सेवा है मौसम संबंधी जानकारी को लेकर। आजकल ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपात चेतावनी के समय।
1: जैसा कि कार्यक्रम के शुरू में हमने बात की कि नागोया में भारी वर्षा के कारण बाढ़ आ गई। 2-3 हफ्तों से जापान के कई इलाकों में भारी वर्षा हुई है। जापान में आपदाओं से जुड़ी आपात स्थिति का सर्वोच्च स्तर है 5। हाल में कई बार स्तर 5 की चेतावनी जारी हुई, तो हमने भी अपनी वेबसाइट और फेसबुक पर तुरंत इसके बारे में जानकारी दी।
0: जी हाँ, वेबसाइट या फेसबुक पर इस चेतावनी के साथ एक लिंक दिया होता है, जिस पर क्लिक करने से मौसम विज्ञान एजेंसी की वेबसाइट खुल जाती है और वहां पर रंगों से दर्शाया जाता है कि कहां पर कितने स्तर की आपदा का खतरा है। दोस्तों, गर्म होती जलवायु के कारण आपदाओं का पैमाना और आवृत्ति बढ़ती जा रही है, और ऐसे में आपात चेतावनी की जानकारी का इस्तेमाल करके आप अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं।
1: जापान में जल निकासी प्रबंधन बहुत अच्छा है, फिर भी कभी कभी इतनी बारिश होती है कि जलभराव हो जाता है। ऐसे में जान माल के नुकसान से बचने के लिए जापान में आपात चेतावनी जरूर काम आ सकती है।
0: जी हाँ, तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप एक बार जरूर हमारी वेबसाइट या फेसबुक का रुख करेंगे और नवीनतम सामग्री पर एक नजर डालेंगे। और दोस्तों, आजकल पत्र कम आने लगे हैं, तो आप जरूर जरूर हमारी वेबसाइट या फेसबुक पर जाएं और अपनी टिप्पणियों से हमें अवगत कराते रहें।
1: बिल्कुल वायला जी, अब हम पहुंच गए हैं कार्यक्रम के अंत में, तो आज क्यों ना कोई गीत सुन लिया जाए।
0: हाँ हाँ, जरूर, इतनी बातें हो गई हैं, तो कुछ गीत संगीत मनोरंजन भी जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: तो आज हम लेकर आए हैं एक गीत, भुताई नी तात्ते, यानी मंच पर तैयार और इसे गाया है युगल जोड़ी यो आसोबी ने। और ये देखिए ये जो गीत है ये एनएचके का 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए थीम सॉन्ग था जिसमें खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया जा रहा है।
1: अरे वाह।
3: ここが私の未来だ。

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गीत बुताईनी ताकते और इसे गाया था युगल जोड़ी यो आसोबी ने। ये गीत आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। और दोस्तों अब समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमें पत्र लिखते रहें। अगर पत्र लिखना झंझट है तो फेसबुक पर अपनी टिप्पणी से हमें अवगत करा सकते हैं अपने विचार। आपके पत्रों की प्रतीक्षा में फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दें वायला कवानों को
1: और रोहिणी रमन को
0: सायोनारा, नमस्कार।

0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबिद और खदीजा शाह।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। अरे वसीमा, कहाँ से आ रही हैं आप?
0: जरा मौसम का हाल देखने गई थी। बारिशों के मौसम में बारिश से मतलब आफात का इम्कान ज्यादा होता है ना, इसलिए नजर रखना जरूरी है।
1: वो मुझसे सुन ले, रोजाना खबरों में हम मौसम में यही जिक्र तो करते हैं।
2: जी, गुज़श्ता हफ्ते कई दिन बारिशें रही हैं। इंतहाई गैर मुस्तहकम मौसमी हालात के बायस बेशतर जापान शदीद बारिशों की जद में रहा।
1: बिल्कुल, गुज़श्ता हफ्ते से टोक्यो समेत कई इलाकों पर बारिश के बादलों का सिलसिला बनने से मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश हुई।
2: जी, और बारिश की शिद्दत का इससे भी अंदाजा लगाएं कि कुछ इलाकों में इस महीने एक घंटे के दौरान इतनी बारिश हुई जो पूरे महीने की औसत के बराबर थी।
0: और खदीजा, 8 सितंबर को तो मौसमियाती एजेंसी ने आईची और गिफू प्रीफेक्चर के एक दरिया में सैलाब की सतह 5 का हंगामे इंतबाह भी जारी किया। ये एजेंसी के 1 से 5 तक के पैमाने पर इंतबाह की बुलंद तरीन सतह है।
2: काफी लोग परेशान रहे भाई, इतने इंतजाम के बावजूद फितरत के सामने तो इंसान वाकई मजबूर है।
1: इसके बावजूद चौकस रहने से बचाव मुमकिन है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और मौसमियाती हुक्काम मौसमी सूरत हाल पर नजर रखने का कहते हैं, इसीलिए नजर डाल कर आई हूँ।
2: अच्छा अच्छा, यानी अब मौसम पर भी तुम्हारी नजर है वसीमा जी। अच्छा खलील साहब, याद आया, गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपने कहा था कि 30 अगस्त से 5 सितंबर तक के बोसाई वीक यानी आफा से बचाव की तैयारी के हफ्ते की मुनासबत से कुछ देखने गए थे आप, और वादा किया था आपने कि आइंदा महफिल में इसकी तफसील बताएंगे हमें।
0: आज है आइंदा महफिल, और अब बताइए कहाँ गए थे।
1: जी, मैं होंजो लाइफ सेफ्टी लर्निंग सेंटर यानी बोसाई कान गया था।
2: अच्छा अच्छा, बोसाई कान गए थे। अच्छा, फिर इसकी कुछ तफसील भी तो बताइए ना।
1: ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप न सिर्फ आफात से निमटने का तरीका सीख सकते हैं बल्कि उन्हें महसूस भी कर सकते हैं।
0: अरे वाह, इसका मतलब है आप तरबियत याफ्ता होकर आ गए। वैसे ये बताइए किस मरकज में गए थे।
1: मैं टोक्यो स्काई ट्री के पास जो है ना होंजो बोसाइकान, वहाँ गया था। बर्की मसनूआत और पॉप कल्चर के लिए मशहूर मरकज आकीहाबरा से ट्रेन लें तो आधे घंटे में पहुँच जाएंगे वहाँ।
2: अच्छा अच्छा, ये तो पास ही है। शॉपिंग के लिए आकीहाबरा आना जाना तो रहता ही है, तो वहाँ से भी इसका चक्कर लगा सकते हैं हम।
0: तो खलील साहब, फिर उस मरकज पर आपने क्या देखा, क्या महसूस किया उस बोसाई कान में?
1: सबसे पहले मैं एक ऐसे बेसमेंट में गया जहां मामूली सा पानी दाखिल हो चुका था, यानी गहराई सिर्फ 20 सेंटीमीटर थी, और मुझे दरवाजा खोलना था ताकि बाहर निकल सकूं। दोस्तों, इस वक्त हमें ये बताया जा रहा है कि अगर आप बेसमेंट में हो और सैलाबी पानी आ जाए तो उस वक्त दरवाजा खोलना कितना मुश्किल होता है। तो यहाँ मेरे सामने दरवाजा लगा हुआ है, यहाँ पे पानी 10 सेंटीमीटर 20 और 30 सेंटीमीटर का मुझे बताया जा रहा है, तो अब मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ और आप भी देखिएगा कि दरवाजा खोलना कितना मुश्किल होता है। तो ट्राई करते हैं, आप भी इंजॉय कीजिएगा। काफी
0: है, 1 फुट से भी कम गहरा पानी है और इतना जोर। खलील साहब,
1: यकीन माने, 1 फुट पानी हो तो मेरे लिए बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा।
2: वो कहते हैं ना, पानी पत्थर काट देता है।
1: मुझे अच्छी तरह पता चल गया कि पानी को कभी हल्का नहीं लेना चाहिए, और अगर आप गाड़ी में हो और पानी आए तो क्या करना चाहिए, ये मुझे कितामुरा शिंजी साहब ने बताया जो इस मरकज के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। सबसे अहम बात यह है कि गाड़ी से जितनी जल्दी मुमकिन हो बाहर निकल जाएं, गाड़ी को महफूज मकाम पर रोकें और फौरन बाहर निकलें। अगर आप गाड़ी के अंदर फंस जाएं तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। वक्त गुजरने के साथ इंजन बंद हो सकता है, एयर कंडीशनिंग काम करना छोड़ देगी और सूरत हाल दम घुटने तक भी पहुँच सकती है। इसलिए लोगों को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि वो फौरी तौर पर गाड़ी से बाहर निकल जाएं। इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि हालात खतरनाक होने से पहले लोग मौसम से मुताल्लिक मालूमात पर गहरी नजर रखें اور بلا ضرورت باہر جانے سے گریز کریں.
0: بالکل بالکل بھائی, اسی لیے میں نظر رکھتی ہوں.
2: اچھا کرتی ہیں وسیم آپ.
1: اس مرکز میں گھر کے بیسمنٹ میں پانی آ جانے کی نقالی بھی کی گئی ہے. میں نے صرف 20 سینٹی میٹر پانی کی سطح پر دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور بمشکل کھول پایا. اس لیے اس سلسلے میں بچنے کے لیے یہ اہم ہے کہ
2: پانی کی سطح بلند ہونے کا انتظار کیے بغیر سب سے پہلے اپنی جان بچائیں.
1: اچھا جی, یعنی آپ نے بھی مجھ سے ٹریننگ حاصل کر لی.
2: بہت اچھے طریقے سے.
0: اچھا, جان بچا کر طوفانی بارش میں باہر نکلنا بھی تو جوئے شیر لانے کے مترادف ہے, بلکہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا.
1: جی, مجھے طوفانی بارش کے تجربے کا بھی موقع ملا تو میرے یہ تاثرات تھے. کافی تیز بارش تھی لیکن ہم چونکہ سہارے کے ساتھ کھڑے تھے تو کافی مشکل ہوگا میرے خیال میں چلنا ایسی صورتحال میں.
0: اسی لیے موسمی پیشگوئی پر نظر رکھنا بڑا ضروری ہے تاکہ شدید بارش میں باہر جانے سے ہم گریز کریں.
2: اچھا, بارش سے تو پیشگوئی کی مدد سے بچا جا سکتا ہے, لیکن زلزلے کی صورت میں کیا کیا جائے؟
1: اس مرکز پر میں نے جاپانی زلزلہ پیما پر شدید ترین یعنی درجہ 7 کے زلزلے کا بھی تجربہ کیا. آپ دیکھتے ہیں تو اب میں ٹریننگ پر عمل کرتے ہوئے دیکھیے گا, ابھی زلزلہ جب آئے تو یوں
3: یہ ایکسپیرینس کرنا بہت مشکل ہے.
0: ارے ارے, تربیت میں ہی آپ کے طوطے اڑ گئے. اصل زلزلے سے واسطہ کہیں پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ توبہ بھی توبہ توبہ.
1: نہیں نہیں, یہی تو فائدہ ہے عملی تربیت کا کہ انسان کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. کافی خطرناک ایکسپیرینس تھا. جب بھی موبائل پہ الارم بچے آپ نے فوری طور پر ایسی چیزوں سے خود کو دور کرنا ہے جو زمین پہ گر سکتی ہیں. دوسری بات,

0: इंसान में बैठना है और सर को ढामना है ताकि ऊपर कोई चीज ना गिरे। इसके अलावा अगर एलिवेटर पर आप मौजूद हैं तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी एलिवेटर से निकल जाए।
1: अच्छा, ना सिर्फ सर बल्कि गर्दन को भी एक हाथ से ढांप लेना चाहिए।
2: बिल्कुल, पैरों के ऊपरी हिस्सों को जमीन के साथ लगाकर जानों और कोहनियों के बल झुकना और हाथ सर और गर्दन पर रखना।
0: यहाँ पे मुझे निशाना नजर नहीं आ रहे हैं, मैं रास्ता खो गया हूँ।
3: अरे ये क्या था?
2: यहाँ मैं आग के बाइस धुएं से भरे कमरे का मुशाहिदा कर रहा था। खूब अंधेरा था और इनखिला के निशानात भी नहीं ढूंढ पा रहा था।
0: This way.
4: This way.
0: Okay, thank you. अच्छा जी। Finally मैं निकल आया। काफी मुश्किल था। थैंक यू।
3: साथियों से भी भाई आपने खूब दाद समेटी।
1: अच्छा खलील साहब, ऐसी सूरत में सबसे अहम चीज क्या है?
2: हमें ये बताया गया कि धुआं हमेशा ऊपर की तरफ उठता है, तो अपना सर जो है छत से जितना दूर रखेंगे उतना आप सेफ रहेंगे। छुप के निकलने की कोशिश करें, लेकिन आपका हाथ जो है वो जमीन को ना लगे, क्योंकि जमीन पर किचियां हो सकती हैं, राख हो सकता है, अंगारे हो सकते हैं।
3: अच्छा, जलजलों के बाद अक्सर आग लगने के वाकयात होते हैं जो बसाओं का जलजले से भी ज्यादा नुकसान का बायस बनते हैं।
2: अमली तजुर्बात के अलावा यहाँ हमें एक वीडियो भी दिखाई गई जो 1923 में टोक्यो में आने वाले जो तबाहकुन जलजला है उसमें बच जाने वाली एक खातून की डायरी पर मबनी थी। इस खातून ने जलजले की पूरी मंजरकशी की है कि जलजला कब और कैसे आया। खास बात यह थी कि उनके शोहर जलजले में बच गए थे, लेकिन खानदान को महफूज मकाम पर मुंतकिल करके घर से सामान निकालने के लिए वापस गए और आग के बायस दोबारा कभी ना आ सके।
3: हाय बेचारी, काश वो ने रोक लेती।
1: मैं इसीलिए कहते हैं कि आफात के दौरान दुरुस्त और बरवक्त फैसला सबसे अहम होता है।
2: आखिर में इस मरकज के डिप्टी डायरेक्टर कितामुरा शिनजी ने अपने पैगाम में ये बात कही, सुनिएगा। आफात की नौइयत एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होती है, लेकिन एक बात मुश्तरक है कि लोग अक्सर घबराहट में गलतियां कर बैठते हैं। सूरत हाल के मुताबिक तरजीहात भी मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के तौर पर जलजले के दौरान अगर कोई शख्स बावर्ची खाने में हो तो वो चूल्हा बंद करने के लिए फौरन भाग सकता है और इस दौरान गिरने वाले फर्नीचर की जद में आकर जख्मी हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में लोगों को फौरन आग बुझाने के लिए नहीं भागना चाहिए, उनकी पहली तरजीह अपनी हिफाजत होनी चाहिए। जब लोग घबरा जाते हैं तो ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि सबसे ज्यादा अहम काम क्या है, और यही अक्सर चोट लगने का सबब बनता है।
3: वाह भाई, ये बहुत अच्छी बातें आपने, बल्कि अच्छी अच्छी बातें आपने हमें बताई। जान है तो जहान है, वाकई कुछ नई बातें हमें पता चली और कुछ बातों या मालूमात में हमें जो है वो ताज़ा हो गई हमारी जो थी वो।
1: अच्छा खदीजा, मैं देख रही थी इन्होंने पानी की आफत का तजुर्बा किया, आग का तजुर्बा किया। मैं समझती थी कि आग ज्यादा खतरनाक होगी, लेकिन अब पता चला कि पानी भी उतना ही खतरनाक है और दोनों से बचाव की मशक तो जरूर करनी चाहिए। खदीजा, प्लान बनाएं, किसी दिन चलें हम भी।
3: हाँ जरूर, वाकई चलना चाहिए।
1: तो जरूर जाएंगे, लेकिन अब बारी आ गई मौसीकी की और आज के मौजू के हवाले से गीत मुंतखब किया गया है आशिताए यानी कल की जानिब। ये गीत गुलुकारा मीशा ने गाया है।
3: मीशा ने NHK कोहाको उतागासन में 8 से जायद बार परफॉर्म किया है। उन्होंने ये गाना 2011 के शदीद जलजले और सुनामी के बाद इमदादी सरगर्मियों की मामनत के लिए गाया था।
2: इस शदीद जलजले की खबरें देखते हुए मीशा ने सोचा कि बहुत से लोग मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हैं और रात को और भी ज्यादा बेचैनी महसूस करते हैं। उन्होंने उम्मीद की कि ये गाना खुसूसन उन लोगों को सुकून देगा जो खौफ और गैर यकीनी का शिकार हैं।
1: इस गाने का लाइव वर्जन 2011 में टोक्यो के NHK हॉल में मनाकिदा एक कॉन्सर्ट में रिकॉर्ड किया गया। इसकी फरोख्त की आमदन का कुछ हिस्सा उन तंजीमों को दिया गया जो इस आफत से मुतासर अफराद और इलाकों की मदद कर रही थी। तो आइए सुनते हैं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला कवानों का कोन्निचिवा नमस्कार।
1: सभी साथियों को रोहिणी रमन का भी प्यार भरा नमस्कार और कोन्निचिवा। लेकर हाजिर हैं आपके पत्रों के जवाब।

0: दोस्तों, आज का कार्यक्रम कुछ खास है, लेकिन खासियत कार्यक्रम में नहीं बल्कि इसे किए जाने वाली जगह में है।
1: जी हाँ, आज हम बिल्कुल नए नवेले स्टूडियो से आप तक ला रहे हैं यह कार्यक्रम।
0: जी हाँ, हमारा कार्यालय दरअसल अब एक नई इमारत में शिफ्ट हो चुका है, इसलिए स्टूडियो भी बिल्कुल नया नया है।
1: तो वायला जी, कैसा लग रहा है आपको इस नए स्टूडियो में?
0: अरे बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए, बिल्कुल बड़ा सा हो गया है और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें इतनी बड़ी खिड़की है और बाहर का नजारा तो भाई क्या कहने हैं।
1: बिल्कुल वायला जी, ये जो स्टेडियम है ना, वो जापान का 1964 के समय ओलंपिक खेलों के समय बनाया गया स्टेडियम ही है ना?
0: हाँ, जो दिख रहा है ना आपको।
1: जी
0: हाँ, ये वही स्टेडियम है।
1: अरे वाह,
0: तो देखिए नजारा तो अच्छा है ना?
1: हाँ बिल्कुल। तो अब हम नई ऊर्जा और उमंग के साथ आपकी सेवा में हाजिर होंगे।
0: जी हाँ, और नई जगह के आदि होने में समय तो लगेगा, लेकिन आपको हम कतई निराश नहीं होने देंगे।
1: बिल्कुल। वैसे वायला जी, इस समय जापान में उमंग, जोश और ऊर्जा का एक और स्थान है ना, वो है नागोया शहर।
0: बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि इस सप्ताह 19 तारीख से नागोया में एशियाई खेलों का शुभारंभ होगा। तैयारियां जोरों पर है और भारत से भी दर्शक आने लग गए हैं।
1: लेकिन मैं देख रही हूँ कि जापान में इसको लेकर कुछ खास उत्साह नहीं है। कई लोगों को पता भी नहीं है कि एशियन गेम्स होते क्या हैं और उनका आयोजन नागोया में हो रहा है।
0: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा रोहिणी जी। देखिए, जापान में ओलंपिक का खुमार तो देखने को मिलता है, लेकिन एशियाई खेलों को लेकर उतना भी नहीं है
1: जी।
0: और मैंने तो ये भी सुना है कि भारत की जो क्रिकेट टीम है वो भी राष्ट्रीय टीम नहीं बल्कि कोई और टीम आ रही
1: अच्छा?
0: है।
1: अच्छा, ऐसा है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन नजदीक आने लगेंगे उत्साह बढ़ना शुरू होगा। वैसे अभी कुछ दिन पहले नागोया में भीषण बारिश हुई थी और बाढ़ की स्थिति जैसी बन गई थी। नदियां उफन रही थी, सड़कें जलमग्न थी, आपदा जैसी स्थिति थी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, और उस समय मैं तो सोच रही थी कि अगर ऐसा खेलों के दौरान हुआ तो क्या होगा।
0: हाँ, लेकिन देखिए अगले दिन हालात बेहतर हो तो गए थे।
1: हाँ।
0: तो थोड़ी राहत की सांस भी ली और उम्मीद है कि लगातार बारिश का ये जो सिलसिला जो चल रहा है ना, अब थम जाएगा और ये खेल जो है शानदार तरीके से आयोजित हो सकेंगे।
1: जी हाँ, बस बारिश ना हो और समुद्री तूफान भी ना आए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल भारत में लोगों को अभी भी इसको लेकर जोश दिख रहा है और हमारे श्रोता भी तो पीछे नहीं है ना। और इसी सिलसिले में सुरेश जी ने भी हमें लिखा था ना।
1: जी हाँ, श्रोताओं में भी जोश दिख रहा है। सभी को बेसब्री से इंतजार है इस आयोजन का। देखते हैं कि भारत का क्या प्रदर्शन रहता है।
0: जी, और भारत में इसका प्रसारण तो देखिए बढ़ चढ़ कर होगा, तो श्रोताओं को पल पल की जानकारी शायद हमसे ज्यादा मिल जाएगी।
1: जी,
0: लेकिन भाई हमारी भी नजरें टिकी होंगी इस पर। और अब रोहिणी जी देखिए, विराम देते हैं अपनी बातचीत पर।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और बढ़ते हैं पत्रों की ओर।
1: हाँ हाँ, चलिए पत्रों की ओर बढ़ते हैं। अच्छा वायला जी, यह देखिए, यह डाक से आया एक पत्र है।
0: अरे वाह, डाक से, दिखाइए जरा, बड़े दिनों बाद कोई पत्र पहुंचा है ना। दिखाइए
1: यह लीजिए।
0: अरे वाह,
1: भेजा है पी हनुमंता राव जी ने हैदराबाद से।
0: अच्छा, अरे देखिए कितनी सुंदर डाक टिकटें लगाकर भेजी है ना।
1: बिल्कुल।
0: और ये ऐसे देखने में लग रहा है ना कि भारत की कठपुतलियों के थीम पर कुछ आधारित ये डाक टिकटें हैं।
1: हाँ,
0: कितनी रंग बिरंगी हैं, कितनी अच्छी है ना।
1: बहुत ही सुंदर है। राव जी ने हमें आशीर्वाद दिया है।
0: अच्छा।
1: और कह रहे हैं कि हमारा रेडियो और टीवी प्रसारण दोनों ही देखते हैं।
0: भाई ये तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि दोनों पर एक से एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम होते हैं। राव जी आगे भी देखें और हमें फिर लिखें। वैसे आप वेबसाइट के माध्यम से भी लिख सकते हैं या फिर फेसबुक पर, इससे आप नियमित रूप से अपनी टिप्पणी हमें भेज पाएंगे।
1: वायला जी, पिछले दो अंकों में हमने पाक कला विशेषज्ञ और कंटेंट क्रिएटर नेहा शाह से बातचीत प्रसारित की थी ना।
0: हाँ नेहा जी, आपको पता है कि जापान में शाकाहारी वीगन भोजन पर उन्होंने जो जानकारी दी थी वो वाकई दिलचस्प रही, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं मालूम था उन चीजों के बारे में।
1: उनकी बातें आपको ही नहीं श्रोताओं को भी बहुत भाई।
0: अच्छा
1: जी, जमशेदपुर झारखंड से SB शर्मा जी ने लिखा है कि नेहा शाह से की गई वार्ता काफी रोचक और जानकारी से भरपूर लगी। जापान के अनेक शहरों की यात्रा और शाकाहारी भोजन पर चर्चा अच्छी लगी। एक महिला द्वारा चलाए जाने वाले रेस्तरां और उसके कायदे कानून की जानकारी भी खास थी। रेस्तरों की मालकिन द्वारा समय की पाबंदी और सेवा की कटिबद्धता जापान देश के अनुशासन को दर्शाती है। रोचक और सुंदर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद
0: शर्मा जी, इस बेहतरीन टिप्पणी के लिए धन्यवाद। सही में उसूलों पर कायम रहना और समय की पाबंदी पूरे जीवन में ऐसा अनुशासन ले आती है कि उससे कई चीजें आसान हो जाती हैं। हमें खुशी है कि आपको ये प्रस्तुति पसंद आई। और रोहिणी जी, देखिए नेहा जी के साथ बातचीत पर केसिंगा ओडिशा से सुरेश अग्रवाल जी ने भी लिखा है, और इन्होंने लिखा है कि नेहा दीपक शाह द्वारा प्रस्तुत जापानी व्यंजनों का परिचय और रसा स्वादन बेहद रुचिकर लगा। लजीज व्यंजनों के साथ हिंदी में उनका अंग्रेजी का तड़का भी काबिले तारीफ रहा।
1: बिल्कुल।
0: हालांकि उन्हें सुनकर लगा कि वे चाहती तो सहज और अच्छी हिंदी में भी अपनी बात उतनी ही प्रभावशाली ढंग से रख सकती थी। ये जानना भी सुखद लगा कि वीगन फूड के रूप में जापान में अब शाकाहारी व्यंजनों के विकल्प काफी बढ़ गए हैं। इसमें दो राय नहीं कि वीगन फूड का बढ़ता चलन शाकाहारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नेहा जी से रूबरू कराने के लिए हार्दिक धन्यवाद।
1: वायला जी, दूसरी कड़ी पर भी अलग से टिप्पणी आई है सुरेश जी की।
0: अच्छा
1: जी, लिखते हैं 6 सितंबर का चेरी के देश से अंक बेहद खास और ज्ञानवर्धक लगा। यद्यपि इस अंक में पत्रों को समाहित नहीं किया जा सका, लेकिन पाक कला विशेषज्ञ नेहा दीपक शाह से हुई बातचीत की दूसरी कड़ी में जापानी व्यंजनों के संबंध में दी गई जानकारी अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण लगी।
0: अच्छा
1: जी, वो आगे लिखते हैं, नेहा जी से हुई बातचीत सुनते हुए यह अनुभव हुआ कि भारत और जापान के बीच सदियों पुरानी मैत्री अब केवल सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्वाद और पाक कला के आपसी आदान प्रदान के रूप में भी अपनी नई पहचान बनाएगी। विशेष रूप से सोया मिल्क को फाड़कर बनाए जाने वाले तोफू की रेसिपी मुझे बहुत पसंद आई।
0: हाँ हाँ, वैसे उनका तरीका अच्छा था, तो मैं भी इसे घर पर ट्राई करना चाहूंगी।
1: बिल्कुल। सुरेश जी, देखिए आगे लिखते हैं, जापानी खानपान की यह सरलता और विशिष्टता सचमुच आकर्षित करती है। नेहा जी ने जापानी भोजन की विशेषताओं के साथ साथ जापानी जीवन शैली में अनुशासन, स्वच्छता, शुचिता और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में जिस सहज और रोचक ढंग से बताया, उससे जापान के प्रति हमारा आकर्षण और भी बढ़ गया है। बातचीत के माध्यम से जापान को केवल एक देश के रूप में नहीं, बल्कि एक विशिष्ट जीवन दृष्टि और संस्कृति के रूप में जानने का अवसर मिला। नेहा जी से यह सार्थक और ज्ञानवर्धक बातचीत सुनवाने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।
0: सुरेश जी, आपकी प्रतिक्रिया बेहद लाजवाब है। आपने सही कहा कि कोई भी देश केवल कोई भूखंड नहीं, बल्कि एक संस्कृति है जिसके कई पहलू हैं, और उनमें से भोजन संस्कृति वहाँ की जीवन शैली को भी दर्शाती है, एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। वैसे आज तक मैंने ज्यादा वीगन ट्राई नहीं किया।
1: मैंने
0: है,
1: भी नहीं,
0: और एक दो बार ही खाया है, लेकिन मुझे इतना मजा सच कहूँ तो इतना मजा नहीं आया। लेकिन नेहा जी की बातें सुनकर मैं एक बार फिर सोचती हूँ कि आजमा कर देखना चाहिए।
1: चलिए आजमाएंगे जल्दी।
0: जी
1: हाँ, और वैसे जापान में वीगन या शाकाहारी भोजन तलाशना एक चुनौती हो सकती है। आए दिन आपको भारतीयों के ग्रुप्स में इस प्रकार के भोजन के बारे में जानकारी तो साझा करने के अनुरोध मिलते ही रहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और मेरे कई शाकाहारी मित्रों के साथ अब मैं ये जानकारी जल्द से जल्द साझा कर लूंगी।
0: हाँ, वैसे भारतीय रेस्तरां तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन अगर जापानी भोजन खाना हो तब तो आती है मुश्किल।
1: जी,
0: लेकिन जापानी भोजन में भी शाकाहारी विकल्पों के बारे में जानकारी काफी अनूठी थी मुझे लगता है।
1: हाँ अच्छा, आइए अब देखते हैं, फेसबुक पर भी इस कार्यक्रम से जुड़ी कई टिप्पणियां हैं।
0: अच्छा,
1: परालिया जीवराज लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया पाक रेसिपी, अतुल्य कार्यक्रम चेरी के देश से।
0: और देखिए मोनिता मिधा जी लिखती हैं, नेहा जी के साथ बातचीत बेहतरीन थी, हमें अपने भोजन में सोयाबीन को जरूर शामिल करना चाहिए, जैसे तोफू, मिसो पेस्ट और सोयाबीन की फलियां एदामामे। ये प्रोटीन का बहुत ही बढ़िया स्रोत होता है। हम कुछ साल पहले तक अपने खेतों में सोयाबीन उगाया करते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण अच्छा अब नहीं उगाते। वैसे मैंने सोया दूध और टोफू बनाने का एक बार प्रयास किया था।
1: मुनीता जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। सोयाबीन प्रोटीन का बहुत ही आसानी से उपलब्ध स्रोत है। इसे आसानी से भोजन में शामिल भी किया जा सकता है, बस थोड़ा सा रचनात्मक होने की जरूरत है।
0: जी हाँ, और देखिए, ये है रूपोश्री बोर ठाकुर जी, ये लिखती हैं, वार्ता पसंद आई, बहुत रोचक लगी। और संसार सिंह लिखते हैं कि मैं इस बार कार्यक्रम पुराने ट्रांजिस्टर पर सुन रहा
1: हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूब कहा आपने। और भी श्रोता हैं जिन्होंने इमोजी के कमेंट किए हैं। इनके नाम हैं नवीन शर्मा, सुनीता जैन, कैलाश शमा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो कृपया नोट कर लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
0: स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में। रोहिणी जी, आइए अब क्यों ना श्रोताओं को हमारी वेबसाइट पर जारी नई नई सामग्री की जानकारी दे देते हैं।
1: जी हाँ, आजकल काफी कुछ डाला जा रहा है और तकरीबन हर रोज ही।
0: जी हाँ, और देखिए, आपको याद है कुछ समय पहले हमने जापान में ऑटो रिक्शा के बढ़ते प्रचलन पर एक रिपोर्ट पेश की थी।
1: हाँ हाँ, मुझे याद है, हमारी NHK की प्रोड्यूसर होरिकोशी जी के ऑटो रिक्शे पर सवारी की थी ना आपने।
0: हाँ, आपको बिल्कुल याद है, सही पहचाना आपने। तो आप देखिए, उस रिपोर्ट का एक वीडियो अब हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसका शीर्षक है हाईटेक जापान में देसी ऑटो रिक्शा की सवारी।
1: दोस्तों, आप इस वीडियो में जापान के नजारों का आनंद भी ले सकते हैं और ऑटो रिक्शा को करीब से देख सकते हैं। वैसे वायला जी, आपको बैठकर कैसा लगा था?
0: अरे रोहिणी जी, क्या बताऊं, देखिए, जब मैं दिल्ली में थी ना, तो आमतौर पर ऑटो लेकर ही इधर उधर आया जाया करती थी, और तब तो मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं फिर से कॉलेज के जमाने में उस समय पहुंच गई हूँ और मैं छात्रा बन गई और दिल्ली की सड़कों पर घूम रही हूँ। और बिल्कुल जैसे एक टाइम कैप्सूल होता है ना, पीछे चले जाते हैं, पीछे चली गई जमाने। और जिस दिन हमने उस दिन रिकॉर्डिंग की थी, तो उस दिन गर्मी भी बहुत थी, तो पूरा भारत जैसा माहौल था।
1: ओ, तो गर्मी ने सोने पे सुहागा कर दिया। एक ऑटो कितनी सारी यादें जगा देता है ना। तो दोस्तों, आप भी यह वीडियो जरूर देखें और हमें अपनी प्रतिक्रिया भेजें।
0: जी हाँ, और इसके अलावा देखिए, हमारी एक नई सेवा है मौसम संबंधी जानकारी को लेकर। आजकल ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपात चेतावनी के समय।
1: जैसा कि कार्यक्रम के शुरू में हमने बात की कि नागोया में भारी वर्षा के कारण बाढ़ आ गई। 2-3 हफ्तों से जापान के कई इलाकों में भारी वर्षा हुई है। जापान में आपदाओं से जुड़ी आपात स्थिति का सर्वोच्च स्तर है 5। हाल में कई बार स्तर 5 की चेतावनी जारी हुई, तो हमने भी अपनी वेबसाइट और फेसबुक पर तुरंत इसके बारे में जानकारी दी।
0: जी हाँ, वेबसाइट या फेसबुक पर इस चेतावनी के साथ एक लिंक दिया होता है, जिस पर क्लिक करने से मौसम विज्ञान एजेंसी की वेबसाइट खुल जाती है और वहां पर रंगों से दर्शाया जाता है कि कहां पर कितने स्तर की आपदा का खतरा है। दोस्तों, गर्म होती जलवायु के कारण आपदाओं का पैमाना और आवृत्ति बढ़ती जा रही है, और ऐसे में आपात चेतावनी की जानकारी का इस्तेमाल करके आप अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं।
1: जापान में जल निकासी प्रबंधन बहुत अच्छा है, फिर भी कभी कभी इतनी बारिश होती है कि जलभराव हो जाता है। ऐसे में जान माल के नुकसान से बचने के लिए जापान में आपात चेतावनी जरूर काम आ सकती है।
0: जी हाँ, तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप एक बार जरूर हमारी वेबसाइट या फेसबुक का रुख करेंगे और नवीनतम सामग्री पर एक नजर डालेंगे। और दोस्तों, आजकल पत्र कम आने लगे हैं, तो आप जरूर जरूर हमारी वेबसाइट या फेसबुक पर जाएं और अपनी टिप्पणियों से हमें अवगत कराते रहें।
1: बिल्कुल बायला जी, अब हम पहुंच गए हैं कार्यक्रम के अंत में, तो आज क्यों ना कोई गीत सुन लिया जाए।
0: हाँ हाँ, जरूर, इतनी बातें हो गई हैं, तो कुछ गीत संगीत मनोरंजन भी जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: तो आज हम लेकर आए हैं एक गीत, भुताई नी तात्ते, यानी मंच पर तैयार, और इसे गाया है युगल जोड़ी यो आसोबी ने। और ये देखिए, ये जो गीत है ये एनएचके का 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए थीम सॉन्ग था, जिसमें खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया जा रहा है।
1: अरे वाह।
3: ここが私の未来だ。

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गीत बुताई नी ताकते और इसे गाया था युगल जोड़ी यो आसोबी ने। ये गीत आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। और दोस्तों अब समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमें पत्र लिखते रहें। अगर पत्र लिखना झंझट है तो फेसबुक पर अपनी टिप्पणी से हमें अवगत करा सकते हैं अपने विचार। आपके पत्रों की प्रतीक्षा में फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दें वायला कवानों को
1: और रोहिणी रमन को
0: सायोनारा, नमस्कार।